0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिया साजी रहसमाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जिले के वरते सोई महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़ियां काई पाए पौड़ी।

0: ताकिश पायमान नानक जिस नो लगा दिस मिले लगा सो परवान भला दूजा
1: जो जी होय सो गए मुह का कह बाओ बीजे बेख मंगे अमृत बेख हुए न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुकम न चले कहीं बने अरदा कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विकास महला।

0: बंद के चुकैया विरोध के मिटैया मा।
1: हुने तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण कर रहे सी। साड़ी स्टूडियो की कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 6 बज रहे ने। हुन तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनो की हिंदी च समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के

0: राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

0: नारी सृष्टि दी सब तो उत्तम रचना है। जिड़ी कौम नारी दा सतिकार नहीं कर दी, वो छेती बर्बाद हो जांदी है।
1: हुने तुसी सुनिया अज दा ज्ञान अमृत। आओ हुन मिलके सरवन करते हैं भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

आओ हुण तुहानू जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 तुसी सुनोगी प्रोग्राम सोहनी सवेर, पंजाबी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब की तुसी सुनोगे सवेरे 8:40। इस नाल ही सवेरे 9:02 तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार डॉक्टर वनीता सीन होरा पासों सितार वादन ते राग ललित सुनोगे। NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग सवेरे 9:30 पेश कीता जाएगा। उस तो बाद सवेरे 10:02 समा रहेगा जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा। लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी वी शिरकत कर सकते हो। उदे लिए तुसी नंबर डायल करना है 0181-3342-173 ते अपने मन पसंदीदा गीत तुसी इस प्रोग्राम राही सुन सकते हो। 11:05 प्रोग्राम पेश कीता जावेगा जी तमक जलंधर पैंती। उस तो बाद दोपहर 12:05 समा रहेगा जी प्रोग्राम वस दे वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी मेरी कलम तो इंदरजीत पाल कौर दी कहानी सुनोगे ओ गल ते सांझ च अज तुसी तुहाडा पैसा तुहाडा अधिकार विषय ते श्री मोहन मोदी होरा पासो दित्ती जानकारी सुनोगे।

फौजी वीरा लई प्रोग्राम 1:15 बजे पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम च अज तुसी सतनाम सिंह जुगरीवाला दे गीत सुनोगे। दूजी सभा च 4:02 बजे तुसी सुनोगे सदा बहार गीत।

शाम 7:45 थे, तुसी सुनोगे हिंदी वार्ता। इस प्रोग्राम च मेरी वाक्य वार्ता ते जानकारी तुहाडे नाल सांझी कीती जावेगी। रात 8 बजे तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम ते साडा इवनिंग शो जिंदगी हसीन है। रात 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट पेश किया जाएगा ते रात 9:30 पेश किया जाएगा प्रोग्राम चर्चा का विषय। ये दोनों प्रोग्राम साड़ी दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। इस दौरान ही रात 10:02 ते तुसी सुनोगे अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। सो ऐसी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स का वेरवा हुण तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत समाचार।

0: पूर्व आईपीएस अधिकारी बाला। आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाशप्रभाकरनावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्यसचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि

0: नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं द्वादशदेशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दिया मुख खबरा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारणा करके जन सिख्या की तब्दीली दिया चुनौतियां नाल नजिठन ले एक उच्च पदरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोना राही नशीले पदार्थां अते हथियारां दी तस्करी नूं रोकन ले अगले 6 महीनों के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करन दी प्रक्रिया विच है। पंजाब विच शहरी स्थानक संस्थावां दीआं 103 नगर पालिकावां दीआं चोणां ले पोलिंग कुछ थावां ते गड़बड़ी नूं छड के अमन अमान मुकम्मल। भारत ने चीन अते पाकिस्तान दे सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द कर दिता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे 3 दिना सिक्किम दौरे दा अज दूजा दिन है। सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE दे भुगतान सिस्टम नूं बेहतर बनाउण लई जनतक खेतर दीआं 4 प्रमुख बैंकों दे सीनियर अधिकारियों नाल वेरवे सहित चर्चा कीती। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने सरहद पारों गैरकानूनी हथियारों की तस्करी करन वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिआं एक सप्लायर नूं असली समेत गिरफ्तार कीता है। भारत ने वियतनाम विच एशियन अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप विच मर्दां दे फ्री स्टाइल वर्ग च सोने ते चांदी दे दो-दो ते कांसी दा एक तमगा जित्तिया है। देश दे उत्तरी अते केंद्री इलाके च जबरदस्त गर्मी ते लू दी मार हेठ ने। ऐसन अज दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जहा इंतजार होर।

जावेद अली और कैलाश खेर दी आवाज़ तुसी सुन रहे सी। बहुत सोहणा जिहा गीत, और इस तरह के जिहड़े स्पिरिचुअल गीत हुंदे ने दोस्तो, जिहड़े साडी सोल साडी आत्मा नूं खुश कर दिंदे ने, उह वी जेकर सवेर दा वेला होवे ते इस तरह दे एंथुजियास्टिक ते पॉजिटिव गीत असीं सुन लईए तां फिर जिहड़ा दिन है उह होर सोहणा बन जांदा है। ठीक उसी तरह जिस तरह साडा इह प्रोग्राम है सोहणी सवेर। ते दोस्तो हुण वेला हो चुक्या अज दे शुभ विचार दा। कई बार जिंदगी च दोस्तों असी कुछ राहां नूं वेखे बिना ही वेख के पहला ही यह सोच लैंदे हां कि नहीं, ए मेरे लिए नहीं बनिया, या फिर शायद हुण कुछ चंगा नहीं होना। पहला ही असी बहुत सारे थॉट्स जिहड़े ने ना अपने माइंड च लै आने हां। पर दोस्तों जिंदगी दी सब तो सोहणी गल पता की है कि रस्ते अक्सर उत्थे खुलदे ने जिथे असी उम्मीद ही छड्ड दिंदे हां, या फिर कई बार अजिहा भी हुंदा है कि असी जिथे कदी उम्मीद ही नहीं कीती हुंदी ओह वाले रस्ते साडे लई खुल जांदे ने। ते अज दा जिहड़ा शुभ विचार है ओह वी कुछ इस तरह नाल ही है दोस्तो। कहिंदे ने कि जिंदगी च कदे भी उम्मीद नहीं छड्डनी चाहीदी, क्योंकि रब ओह रस्ते भी खोल दिंदा है जिन्हां बारे असी कदे सोचिया भी नहीं हुंदा। बिल्कुल दोस्तो, हर चीज़ अपने समय नाल मिलती है, कई बार देर जरूर हो जाती है, पर जेकर मन च विश्वास बनया रहे इस निरंकार ते इस रब ते, तां रास्ते अपने आप बनन लग पैंदे ने। इसे लई अपने सुपनिया ते भरोसा रखना है, मेहनत करते रहना है ते रब ते यकीन बनाए रखना है, क्योंकि कई बारी जो अज इम्पॉसिबल सानू लग रहा ना उही कल साडी सोहनी रियालिटी बन जाएगा। बस ये भरोसा रखना है, अरदास करते रहना है। इबादत च कहिंदे ने बहुत ताकत हुंदी है, इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी। ते आओ फिर मिलके इबादत करिए, सवेर दा सोहणा जिहा वेला है ते क्यों ना मिलके अरदास करिए सब दी चढ़दी कला दी। सतिंदर सरताज दी आवाज़ च तुसी भी सुनो एक गीत।

जेकर होर खास गल दी करी गल करिए ते सब तो इम्पोर्टेंट जिहदे करके वो जाने जाते ने, उन्हां ने बच्चियां नाल बहुत ज़्यादा प्यार किया सी, इसलिए अज भी बच्चे जिहड़े ने उन्हां नू चाचा नेहरू दे नां नाल जिहड़ा है वो याद करते ने। पर दोस्तों 27 मई यानी कि अज दा दिन सन 1964 च उन्हां दा देहांत हो गया सी, पर उन्हां दे जिहड़े विचार ने देश लई उन्हां ने जिहड़ा काम किया वो अज भी लोकां नू प्रेरित करता है। देखो असं अज उन्हों याद कर रहे हैं, जिहड़ी साड़ी अज की जनरेशन है बहुत कुछ सीखने की लोड़ है अजिहो जे जिहड़े महान शख्सियत हुई ने साडे देश दियां, उन्हां दे जीवन तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा लैण की लोड़ है, खास करके अज की जिहड़ी नवीं पीढ़ी जिवें कि असीं गल कर रहे हैं जिहड़ी जनरेशन है जिहड़ी न्यू जनरेशन है खास तौर पर उन्हां नूं जिहड़े साडे वड्डे बजुर्ग ने उन्हां तों उन्हां नाल बैठ के इन्हां दे जीवन बारे होर बहुत सारियां गल्लां अजिहियां ने जिहड़ियां सानूं सीखने की लोड़ है इन्हां उन्हां दे जीवन तों, ते उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो सानूं यह सुनेहा दिंदा है कि सिक्ख्या सोच ते देश लई कुछ जिहड़ा करन दा जज्बा है वो इंसान नूं सचमुच महान बना दिंदा है दोस्तों। ते हुण इसी सोहणी गल दे नाल देश भगती दा जिहड़ा उन्हां ने अपना जीवन समर्पित किया उसे नूं समर्पित करदे हां सा, असीं उन्हां नूं बहुत बहुत नमन करदे हां, दिलों श्रद्धांजलि दिंदे हां, ते तुसी भी सुनो हुणे की।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

अमरिंदर गिल दी आवाज़ से तुसे इंजॉय कर रहे थे दोस्तों, ये सोना जा गीत है दोस्तों। कई बार कुछ खबरां जिहड़ियां ने ना, वो सिर्फ खबरां नहीं होंदिया, वो इंसानियत सोच ते समाज लई कुछ चंगा करन दी प्रेरणा भी बन जांदियां ने। तुहाडे नाल इक खबर जिहड़ी है वो शेयर करन लगे हाँ कि अज जिहड़ा है वो एक बड़ी खबर मैं बहुत सोहनी जी एक रीड कर रही सी सोशल मीडिया से, तो सोचा थोड़े नाल भी शेयर करा। महाराष्ट्र दी दस्या जाता है कि नांदेड़ जिले च दोस्तों एक खबर सामने आई है, तो आई होप तुसी भी इस खबर नू इस ते विचार करोगे कि एक नौजवान सी जिहड़ा दोस्तों उत्थे, उन्हें अपनी विआह नू सिर्फ खुशियां तक सीमित नहीं रख्या, सगों उस खुशी नू समाज सेवा नाल भी जोड़ दिता। होया है कि विआह च आए जिहड़े लगभग 3500 जिहड़े गेस्ट सी उन्हां दे विआह च आए, उन्हां नू असा रिटर्न गिफ्ट, देखो दोस्तों अक्सर असीं देखिए कि विआह शादियां च रिटर्न गिफ्ट जिहड़े ने कई बार बहुत बहुत महंगे महंगे रिटर्न गिफ्ट दिते जांदे ने, पर तुसीं हैरान हो जाओगे जो इस शख्स ने रिटर्न गिफ्ट दिता, उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की बजाय ना दोस्तों एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दी जिन्हें भी गेस्ट आए से, हर व्यक्ति नू 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिता गया। ते ए सोच जिहड़ी है वो इसलिए उन्हों आई क्योंकि पिंड दे कई लोग किसान ते मजदूर सन उन्हां दे, ते जिथे खेतां च काम करदिया कई बार हादसों का खतरा बनया रहिंदा सी उन्हां लई। ते दोस्तों सच पुछो तां खुशी कहिंदे ने उही हुंदी है जो सिर्फ अपने लई नहीं दूजियां दी जिंदगी लई भी सहारा बन जावे। ठीक इस तरह जिस तरह इस शख्स दे वल्लों जिहड़ा है वो महाराष्ट्र रहिण वाले शख्स वल्लों कीता गया कि अपने विआह च जिन्ने भी उन्हां दे गेस्ट आए सी उन्हां ने उन्हां दी एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दित्ती। ते अज दे समें च जिथे लोग दिखावे ते ज़्यादा ध्यान दिंदे ने, उत्थे ऐसी सोच जिहड़ी है ना दोस्तों वो सचमुच दिल नूं छू जांदी है, ते शायद यही असली खुशी है जदों अपनी खुशी दे नाल असी किसे होर दी सुरक्षा ते मुस्कुराहट जिहड़ी है उहनूं वी कायम रखिए, उहदे नाल जुड़ जाइए। प्रोग्राम सोहनी सवेर च अगला गीत अरिजीत सिंह दी आवाज़, नीति मोहन दी आवाज़, लो जी करो इंजॉय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी

0: की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी

0: द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए।

0: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: I want to talk about the challenge and the challenge in front of the देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 year. इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 months. विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु PS, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
1: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950 and the rules framed thereunder.

0: standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनिया खबरां। केंद्र सरकार ने घुसपैठा ते होर कारण करके जनसंख्यकी तब्दीली दीआं चुनौतीआं नाल निपटण लई इक उच्च पद्धरी कमेटी दा गठन कीता है। सुप्रीम कोर्ट ने चोण कमिश्नर वालों वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR दी वैधता नूं चुनौती देने वालियां पटीशनां ते अज अपना फैसला सुनाएगी। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकावां दे मुलांकण लई वरते जांदे इस ते ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उलंघना नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानक संस्थावां लई कल होईआं चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज की गई है। IPL क्रिकेट विच बीती रात पहले क्वालीफायर मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 92 तौड़ां नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारणां करके जनसंख्यकी तब्दीली दीआं चुनौतीआं नाल निपटण लई इक उच्च पद्धरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच ऐलान किया कि कमेटी की प्रधानगी सुप्रीम कोर्ट के सबक जज प्रकाश प्रभाकर न्यौलकर करनगे। जनगणना कमिश्नर के नाल साबका IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, साबका IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव अते अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि नूं कमेटी के मैंबर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय विच एक जॉइंट सकत्र मैंबर सकत्र वजों काम करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले तो अपने सुतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्या तब्दीली बारे उच्च पदरी कमेटी के गठन का ऐलान किया।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: श्री अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या तब्दीली एक गंभीर मुद्दा है जो न सिर्फ देश की प्रभुसत्ता सगों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था समाजिक ढांचे विच डूंघियां तब्दीलियां अते आदिवासी भाईचारे की सुरक्षा नाल संबंधित है। गृहमंत्री ने कहा कि कमेटी गैर कानूनी प्रवास अते होर गैर कुदरती कारणों करके भारत विच जनसंख्या च होण वालियां तब्दीलियां का व्यापक मुलांकण करेगी। सुप्रीम कोर्ट चोण कमिश्न वालों वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR दी वैधता नूं चुनौती देने वालियां पटीशनां ते अज अपना फैसला सुनाएगी। भारत दे चीफ जस्टिस सूर्यकांत अते जस्टिस जयमालिया बागची दी बेंच ने मामले दी सुनवाई तो बाद अपना फैसला राखवां रख लिया सी। पटीशनां विच SIR प्रक्रिया दी वैधता नूं चुनौती दित्ती गई है ते दलील दित्ती गई है कि संविधान दी धारा 326 लोक प्रतिनिधता कानून 1950 अते इस दिन बनाए गए नियमां तहत चोण कमिशन नूं दित्तियां गईआं शक्तियां तों बाहर है। पटीशनरां ने यह दलील भी दी है कि SIR प्रक्रिया ने गरीबां अते कारोबार छड़ के दूजी थां गए लोकां दे वड्डे हिस्से नूं वोट पाउण दे अधिकार तों वांझा कर दिता है। यह पटीशनां पिछले साल जून विच बिहार विच SIR प्रक्रिया शुरू करन दे चोण कमिशन दे फैसले तों बाद दायर कीतियां गईआं सन। सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वख-वख राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं पारदर्शिता नूं उत्साहित करन अते SIR प्रक्रिया तों प्रभावित वोटरां दीआं मुश्किलां नूं घट करन लई अंतरिम निर्देश जारी कीते सन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सिक्किम दौरे के दूजे दिन अज नाथूला दर्रे का दौरा करेंगे। वह नाथूला विखे ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम पेश करन जा रहे हैं जी महक पंजाब दी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म केरी ऑन जट्टा जो गिप्पी गरेवाल दा गाया गीत। तुसी भी करो इंजॉय।

0: जी तब्दीली तो हुई है। वो केड़ी तब्दीली है भाई? देखो जी, जड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नू, ते ओ हुन हो गया शनिवार नू।
1: यानी कि झांझरां दे बोर हुन शनिवार छण क्या करनगे?
0: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नू प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नू।
1: यानी कि बुधवार दी झांझरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नू छण क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
0: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थी। ये आकाशवाणी था जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब की। तो इस प्रोग्राम च अगला गीत तो हानू सुनान जा रहे हैं फिल्म असानू मान वतना दा। इस फिल्म चो हरभजन सिंह ते सुनिधि चौहान दा गाया गीत। तुसी भी करो इंजॉय।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी महक पंजाब दी पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते इस प्रोग्राम च आखिरी गीत सुनान जा रहे हैं तुहानू फिल्म स्माइल चों दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत। लो जी करो इंजॉय।

डॉक्टर वनीता सेनहोरा वालों सितार वादन ते राग ललित सुनिया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ई आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे प्रोग्राम एनसीआरटी वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग

0: क्या करते हैं?
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी,
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी,
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी,
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी,
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी,
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.

0: This was Elephant. This was Monkey. And this was Tiger. This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are a very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
7: जय जेरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह।
8: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
8: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
10: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
11: ठीक कहते हैं मंत्री जी,

0: मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
1: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
1: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
1: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
1: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
0: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
1: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
4: बिल्कुल।
1: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: John Albert! What how? तुम चारों तरफ से घिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी, हलो फरमाइश आओ जानते हैं। इस प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हलो हलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, हाँ जी
1: मैम आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है।
0: हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं जी कृष्ण सिंह बोल रहा जी, पिंड छतीर वाला जिला फाजिलका जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम च। ठीक है जी, फिर आज केड़ा गीत सुनोगे?
1: देश प्रेमियों सुना दो जी, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।
0: ठीक है जी, बहुत सोहने सुनेहे दे नाल मोहम्मद रफी दी आवाज़ च गीत सुनना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने ले,
1: धन्यवाद मैम,
0: धन्यवाद जी। मोहम्मद रफी दी आवाज़ च देश प्रेमी फिल्म दा एक गीत सुनना चाहते रहे। लो जी तुसी भी सुनो ते तुसी अपनी फरमाइश सानू दस सकते हो। तुसी नंबर डायल करना है जी, नंबर है 0181-3342-173। नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते सुनो अपने मन पसंदीदा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी, हेलो फरमाइश, आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हेलो, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने जी?
4: मैं जगतार सिंह गिल बोल रहा जी, पिंड बंगाला, जिला फाजिलका, तहसील बोरपुर। मैम
3: बहुत बहुत स्वागत है जी, की हाल चाल ने जी?
4: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: हाँ जी, फिर गर्मी ने पूरा जोर फड़िया होया ते किवें दा किवें बचाव कर रहे हो तुसी अपना?
4: हाँ जी,
3: गर्मी तो किवें बचाव कर रहे हो, हीट वेव जड़ी है ओदा अलर्ट?
4: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਸਿਰ

0: जानी दुश्मन फिल्म चो मोहम्मद रफ़ी आशा ते चौरस दा गाया गीत तुसी सुन रहे सी, बहुत सोहना जिहा गीत सी ते प्रोग्राम। हैलो फरमाइश चाहो जानते हैं हुण अगली फरमाइश किहड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो
1: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे ने जी?
1: अजी सरवण कुमार रणवा गांव वीरामवाली जिला फाजिलका पंजाब जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे इस प्रोग्राम च।
1: हाँ जी बढ़िया जी।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे जी फिर?
1: मैडम जी कई जना शिकायत करे राजस्थान का के भी फाजिलका जिले का फोन बहुत ज्यादा लगा, मारो नंबर को नहीं आवे।
0: अच्छा जी।
1: के कारण है बजाओ, मतलब पंजाब का श्रोता कुछ गैप गालना चाहिए।
0: ये देखिए जी, जिहड़ा प्रोग्राम है ना हैलो फरमाइश, इन्नियां सारियां फरमाइशां आंदियां ने, इन्नियां सारियां कॉल्स आंदियां ने, और साड़ी भी पूरी कोशिश रहिंदी है कि जिन्ना कॉल्स असी अटेंड कर सके उन्नियां अटेंड करिए।
1: और मैडम जी आपने तो अटेंड करनी है, पर हमें श्रोताओं को तो थोड़ा समझना चाहिए ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: आ तो गलती तो हमारी है लोगों की।
0: बिल्कुल जी, पर जिहड़ी क्रेज है ना रेडियो नू लैके वो भी बहुत ज्यादा है, ते असी ते यही कह सकते हैं कि सारिया नू वारी मिलनी चाहिए है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: हाँ जी
1: कई कई बंदा तो है, मतलब 40-40 साल सुनता ना हो गया और फोन लगे को नहीं लोगों को।
0: अच्छा जी, तो

0: राम तेरी गंगा पहली। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ से तुसे सुन रहे से प्रोग्राम हेलो फरमाइश शाओ जान दिया। हुन अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश बिल्कुल जी प्रोग्राम से। हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: ऊपर वाले तेरी महफिल में हम ये फरियाद करते हैं, उनको तुम सदा खुश रखना जिन्हें हम फोन सुबह सुबह और कभी कभी शाम करते हैं।
0: वाह जी वाह।
1: मैलो जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: शीश गुलियानी दिल कुशा मार्केट जलंधर रहता अपने दोस्तों से जल्दी अंदर।
0: वाह जी वाह। वाह जी वाह। सो फिर आज प्रोग्राम च किन्ने दिन बाद कॉल लग गया थोड़ा?
1: मैं अज ही

0: मोहम्मद रफ़ी दी आवाज़ तुसी सुन रहे सी। गीत बहुत सोहना चाह प्रोग्राम हलो फरमाइश चल रही है और कड़ी दी सुइयां जिहड़ियां ने ना वो प्रोग्राम नूं हुण खत्म करन वाले इशारा कर रही ने, लेकिन असी एक लास्ट कॉल जरूर लेनी है। हैलो हैलो।
1: हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी कौन बोल रहे जी?
1: बरनाला से बोल रहे हैं। ये आप गाना बताया था आपको,
0: हाँ जी बरनाला तो बोल रहे हो, नाम दसो जी अपना कौन हो जी तुसी?
1: अजीत सिंह जी।
0: ठीक है जी। अजीत सिंह जी किवें दा उत्थे? देखो जी गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वेले, तो किवें बचाव कर रहे हो तुसी?
1: गर्मी तो ये बचा रखो जी, बाहर घट निकलो, नहीं
0: बिल्कुल
1: गिद्दा
0: जी
1: गिद्दा कपड़ा रख के निकलो, छतरी छतरी लाके निकलो।
0: बिल्कुल जी। की
1: हाँ जी,
0: काम काज
1: पानी
0: करते हो तुसी?
1: मैं तो ये टायर ही बिल्ली है जी।
0: अच्छा जी रिटायर्ड हो, ठीक है जी। हाँ जी फिर केड़ा गीत सुनोगे जी प्रोग्राम च?
1: आशिकी फिल्म लगा, जो मर्जी वधिया जाए।
0: ठीक है जी आज की।

0: जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में

0: संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। IPL क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र कुमार। मेन बाज़ार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, सिमरजोत सप्पल, फतेह जोत सप्पल, टानी लाल खां, जावेद खां, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, फतेहाबाद हरियाणा तो इंद्रपाल बिट्टू, चंचलपुरी, आंचलपुरी, गगनपुरी, प्रिंसपुरी, जीवन सिंह बुक, मेन बाज़ार शेरपुर ज़िला संगरूर तो कमलजीत कौर, अजीत कौर, अमनदीप कौर। तो अगला मैसेज आया जी गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर तो विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी अते शगुन बारासा दा। अगले साथी ने दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा अते नोखे लाल वर्मा। गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम अते वीरेन। भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीपा, कमिल छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा अते पूजा परिहार। ते अगला मैसेज है जी संदीप मक्कड़, जोगिंदर पाल मक्कड़, किरण मक्कड़, अनु मक्कड़, बूटी राम हांडा, पिंगावाला चौंक, गुराया, जलंधर तो। अगला मैसेज आया जी पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह कुड़ियाना, मनजीत कौर, दीपिंदर सिंह, गुरबख्श सिंह, जीत सिंह कुड़ियाना, सुखदेव सिंह चैल, बुर्ज हनुमानगढ़ तो, कुलवंत गिल मलोट तो। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो लिखते ने रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत अते गुरशब्द सिंह राहुल। अते अगला मैसेज है पिंड हीरावाली फाजिलका तो सुभाष गोदरा, बिमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, माफ करना हिमांशु गोदारा, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा। जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। अनारकली बाजार जगराव तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। पिंड बोसवानी तहसील पायल जिला लुधियाना तो रणजोत सिंह, हरजोत सिंह अते चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, शेफाली शेफी अते मास्टर डेविस। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आं कवर गरेवाल दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज किदा आया और वेखदियां जी अगला मैसेज आया है गुरदासपुर तो प्रीतम दास सत्या देवी वानिया अरमान ते कैनेडा तो अविताश दा नाल ही दैविक अंगुराना। अगला मैसेज लिखते ने टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद नवदीप चतुर्थ अर्नव चतुर्थ लाजवंती अते अनीता रानी। अगले साथी ने महमगेट नाभा तो सोमदत्त ज्योति रानी कैरव गुरुमंत अते हरजीत ते नाल ही अगला मैसेज आया जी सनावत तो मुहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मुहम्मद शाकिर मुहम्मद अलकमा खन्नी मुहम्मद अल्तमश खन्नी रमेश गौड़ मुहम्मद शदाब खन्नी दा। अगला मैसेज लिख देने डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर कुमार गौरव मंदूरकर। मनदीप सिंह दीपा लिख देने जलालदीवाल जिला लुधियाना तो ते अगले साथी ने वाइटफील्ड बेंगलुरु तो भरत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्यंदु भूषण संस्कृति अते पौरुष। गुमला झारखंड तो मैसेज आया जी एस एम जावेद जी का कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर तो मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अरजान अबान अब्बासी। अगला मैसेज लिख देने गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान तो बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार रामदेवरा तो दिनेश चौहान डांगरी तो बाबू राम जयपाल अते खलीफो की बावड़ी तो खुदा बख्श खलीफा। सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा मंडी डब्बाली तो अगले साथी ने हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान अते गर्वी। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सबीर राही महराज जहान आज़ाद नागार्जुन हरिद्वार उत्तराखंड तो अगले साथी ने मलोर तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत गिल कैनेडा तो जगतार जग्गा तोला किंगरा तो दिशा मोहला सोनी गिल पाल गिल गुरदयाल गिल मुक्सर पिंड मुक्सर

0: मोहल्ला तो
1: हनुमानगढ़ फाजिल्का तो लिख देने, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। अगले साथी ने पिंड संदोहा, नेड़े मोड़ मंडी, जगराज सिंह कणकवालिया, गंगाराम, मोहन लाल शौकी, अरविंदर कुमार जलंधर तो। दतरेंगी तो लिख देने, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा। फाजिलका पंजाब तो लिख देने, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी, शालनी, तिवानशी अते वाणी खेड़ा ते नाल ही आरबी खेड़ा। श्रीगंगानगर राजस्थान तो मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु अते डॉक्टर सुनील जनागल। रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा अते करुणा वर्मा। ते अगला मैसेज आया जी, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान अते प्रतीक चौहान दा। पिंड लौंगोवाल जिला संगरूर तो लिखते ने अवतार सिंह चौहान, अजैब सिंह चौहान, कुलवीर सिंह अते कुलविंदर सिंह। बठिंडा रोड मंडी डबवाली तो लिखते ने राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। अते पिंड शाहपुर जाजन तहसील डेरा बाबा नानक तो लिखते ने राजवंत सिंह रंधावा, निशान सिंह फौजी, अमरीक पेटर। बलविंदर सरा, गुणतास, रमनदीप, मनिंदर सरा लिखते ने पिंड मोरजट सिखा हनुमानगढ़ तो। ते अगले साथी ने पिंड चांदमारी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिद्धा, ममता रानी, अभिषेक मिद्धा अते दिव्या। पहाड़गंज मुल्तानी ढंडा तो लिखते ने अनिल अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक अते मधु नायक। अते अगला मैसेज है बठिंडा पंजाब तो प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करण वीर करण, दुपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन अते अभिजोता। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

सुरीत, रमेश साहू। डुमराओ बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा ते दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य ते परमानंद आर्य। सरीमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी ते आसमा खातून अंसारी। विक्की मायल, संतोष मायल, रोनित मायल लिखते ने पिंड साबुआना, जिला फाजिलका तो। अगली फरमाइश है जी, जगदीश कुमार मक्कड़, अरविंद, मुकेश, नीरज, भुविन ते लिखते ने काबुलशा खुबन, जिला फाजिलका तो। अगली फरमाइश आई है रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान तो। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित ते खुशी गोस्वामी दी। अगले साथी ने प्रोग्राम मलकीत, मेन बाजार गुनियाना मंडी तो। जोगिंदर सिंह पिंड सीविया तो, सुरजीत सिंह पिंड ख्याली वाला तो, ते कुलवंत सिंह मलोट तो। अगले साथी ने दुर्गा कलोनी हांसी तो, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी अते बब्बू ते डब्बू। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो, दातार सिंह, संगीता, तुषार सिंह, रिकी शेखावत। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन, परमजीत पूर्वा कक्कड़वाल, पुल तूरी तो। बिंदर खेड़ी, करमजीत बमाल, मिट्टू सप्पल, अमरीक जलान अते रमन प्रिंस। अगला मैसेज आया जी रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो, जगमाल सिंह डागरा डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक, जे एस नायक दा। ते अगला मैसेज लिखते ने MLB रोड ग्वालियर तो, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK, पप्पी खुराना। अगले साथी ने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी अते दिशा गोस्वामी। ते अगले साथी ने सुखदेव कलेर, नरेश कलेर, संतोष रानी, पूजा रानी, पुनीत निगा, शुभदीप कलेर। आओ फिर इन्हां सब दी ए मैसेज है जी बलाचौर तो, इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा अगला गीत हाजिर करदे आ। ए गीत गाया जी मिक्की नरूला ने,

शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम अते आशीष विश्वकर्मा लिखते ने पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तो। रघुवीर नगर तो दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब अते लड्डू। ते अगला मैसेज है जी, करणवीर सिंह पॉल, सराबा नगर जलंधर तो। आर्यनगर कोहका भिलाई तो लिखते ने उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल अते नंदनी जंगेल। धमधा ग्राम सुखरी कला तो लिखते ने अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल अते अंजलि जंगेल। महसौल सीतामढ़ी तो लिखते ने अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, नारिश वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार तो लिखते ने मोहम्मद आसिफ खान अते निखत परवीन। अगला मैसेज है जी, नरेंद्र चावला दा पिंड मुकरौमपुर, तहसील बस्सी पठाना, जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो। हरीश प्रिंस मुस्कान, पारची महक, धनमीत मनी, पीयूष नेहा ओम। सुधीर मलिक पिंड भागपुर, जिला होशियारपुर तो लिखते ने मन्नत जन्नत भाविक। ते अगला मैसेज है, आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भविक ढींगरा दा पंचकुला तो। हैबोवाल कला उत्तरी जिला लुधियाना तो लिखते ने साडा अगला मैसेज है जी, दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबर जंग सिंह चीमा, पिंड अलूणा मियाना, तहसील पायल, जिला लुधियाना तो दा। ते अगले साथी ने नई बस्ती गंज डुंडवारा तो, मोहम्मद याशीन हामसी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी अते मोहम्मद कलीम अंसारी ते यासीन हाशमी। ते अगले साथी ने चकला बाजार समाना शहर तो, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू समायल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल। ते अगले साथी ने मालियान सरधना मेरठ तो, अनिल जैन जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन अस्टे अते मास्टर जीवियम जैन। अगले साथी ने इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह, पवनीत ग्रोवर, आदर्श नगर बठिंडा तो, ब्रैम्पटन कैनेडा तो, निखिल पाटिया, नीति पाटिया, पाटिया महरीन पाटिया। अगले साथी ने खुर्जा उत्तर प्रदेश तो, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल निताशा, हिनांशा तनेजा। पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़, मुखी राम, मनजीत तनेजा ते पूजा। जलालाबाद पच्छमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी अते निमित आहूजा। आदित्य कुमार केवी सिंह हुशियारपुर तो लिखते ने, ते नाल ही अगला मैसेज है जी, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया दा जमशेदपुर तो। इस दे नाल जी समा सानू होर इजाजत नहीं दे रहा कि असी होर मैसेज लै सकीए। चलते चलते प्रोग्राम च एक अखीरला गीत सुनते हाँ। यह गीत है जी सुरजीत बिंदरखिया की आवाज़ विच। इस दे नाल ही मैनू निधि चुगनू अज दा यह प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत देना। नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि

विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं।

0: कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

आज दे शक्ति रूपाहन बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल दा नाम मुहम्मदी खानू सी अते उसदा जन्म फैज़ाबाद अवध यानी भारत विच 1820 ईस्वी दे लगभग होया सी। ओ पेशे नाल एक दरबार

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय

में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक

0: है वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा।

7:45 सुन सकोगे हिंदी वार्ता, मेरी व्यज्ञ वार्ता, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वार्ताकार होंगे प्रेम विज।

रात 8 बजे दा समा होवेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। आठ बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट, 9:30 बजे चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तों।

फौजी वीरो जय हिंद। मैं निधि चुक लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई फिल्मी गीतां दा ए प्रोग्राम ते प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां फिल्म वीर दे एक गीत दे नाल। इस गीत नूं आवाज़ दित्ती है रेखा भारद्वाज ने।

फौजी वीरों, रेखा भारद्वाज दे इस गीत तो बाद अगली आवाज़ है एआर रहमान, जावेद अली अते मोहित चौहान दी। फिल्म का नाम है रॉक स्टार।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी दा। इस गीत नू आवाज दिती है नीरज श्रीधर अते सुजैन डी मेलो ने।

0: कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी अख्तियारात से तजावुज़ किया है। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
1: दिल्ली में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का काम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव फहरिस्तों का मुसविदा 5 अगस्त को शाये किया जाएगा और हतमी चुनाव फहरिस्त इस साल 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। दिल्ली के आला चुनाव अफसर ने कहा कि खुसूसी नजरसानी का असल मकसद ये है कि कोई भी अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से बाहर न रह जाए और गैर अहल वोटर फहरिस्त में शामिल न होने पाए। जनाब अशोक कुमार ने कहा कि बूथ सतह के अफसर अगले महीने की 30 तारीख से घर घर जाकर दिल्ली चुनाव फहरिस्तों की तस्दीक करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज़्यादा मुतहरक कारोबारी को निज़ाम की ज़रूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का अदा भी किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह जहाँ तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वह जिसमें पानी की कमी ना होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
0: रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वह अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीज़ों की खैर आफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे रबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज़ धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम भी करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकोनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शुमाल मशरकी खत्ते में इतवार तक तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 3-4 दिन के दौरान केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के बाद हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 इम्तहानात पेपर लीक मामले में 2 और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्या नगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम

0: के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक उसने तीन तलबा की मुलजिम पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवालात हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था, जिसमें मुलजिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता, क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राहम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज़ पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवतन नैनी अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हरा कर IPL 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। CBI ने नीट UG 2026 इम्तहानात के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है ते प्रोग्राम च फौजी वीरो अगला गीत सुनदे आ फिल्म उड़ान दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है अमित त्रिवेदी ने।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म क्वीन दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है रुपेश कुमार राम ने।

फौजी वीरो प्रोग्राम चलते चलते एक अखीला गीत हाजिर है, फिल्म इश्किया दा। इस गीत नू आवाज दिती है राहत फतेह अली खान ने।

0: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता

0: पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और

0: महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा

0: कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
1: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
2: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दीआं तसदीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए। आओ हुण सुनदे आं लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी सतनाम सिंह डुगरीवाला दे गाए लोक गीतां दा आनंद माणोगे।

प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती ते तुसी आनंद मान रहे हो सतनाम सिंह दुगरीवाला दे गाए लोक गीतां दा। आ हुण सुनदे आ उन्हां दी आवाज़ विच कुछ टप्पे।

एक वादा है जो टुटेगा नहीं कदे, साथ साडा छुटेगा ना कदे, चलदा रहेगा अपने प्यार दा कारवा, ते हे प्यार दा कारवा रुकेगा ना कदे। दोस्तों असीं तुहानूं इहदे तुहाडियां फरमाइशां दे गीत सुणांदे रहांगे, ते तुहाडे वल्लों भी बहुत सारियां चिट्ठियां सानूं प्यार भरियां आ रहियां ने। प्रोग्राम दी अगली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजण वाले ने मुक्तसर तों बाबू सिंह।

प्रोग्राम सदाबहार गीता दे विच अगला गीत हाजिर है फिल्म संजोग दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है लता मंगेशकर ने।

सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला

0: करेगी वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 हो रहे हैं। हुण पेश प्रोग्रामा दा वेरवा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: हाँ जी देखो पटवारी साहब जिदा आप सारे जानते हैं कि प्रवास जिहड़ा है ये मनुखी है जा जीवन का प्रवास है ये मुढ़ कदीमों चलता आया
1: चलता आ रहा जी बिल्कुल सही
0: और यह होना भी चाहिए है। देखो जे आप एक जगह के उत्ते खड़े रहांगे तो एक जगह के उत्ते खड़ के फिर दुनिया जिहड़ी है खड़ जाती है
1: खड़ जाती है।
0: सो देखो हुण अज आपां देखदे आं कि असी मनुखी प्रवास भी है असी भी जाने वख-वख थावां ते वख-वख देशां दे विच मुल्कां दे विच जाने आ ते इस तरह पंछी भी प्रवास करदे आ
1: बिल्कुल
0: ओह मौसम दे लिहाज नाल करदे आ असी बेमौसमां करदे आ फर्क नहीं
1: फर्क नहीं
0: नहीं असी अपनियां लोड़ां मुताबक करदे आ ओह अपनियां लोड़ां मुताबक करदे है। सो प्रवासी पंछी जदों इत्थे आउंदे है उहनां दा साडे जीवन च बड़ा महत्व है तो उन्होंने उत्ते कई बार आप देखते हैं कई तरह के तशद्दुद भी किए जाते हैं तो ये चीज़ जी माड़ी है। इस विषय के बाबत गल्लां बातां डॉक्टर तेजदीप कौर कलेर होरां नाल सांझियां हुई आप सांझियां करते हैं।
1: आओ सुनिए जी
0: डॉक्टर तेजदीप कौर कलेर जी तुसी प्रमुख पंछी विज्ञानी मुखी जीव विज्ञान विभाग खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा तो साढ़े कोल आयो सब तो पहलों देहाती प्रोग्राम की बैठक के जी आए कहने डॉक्टर साहब गल है कि ताडा विशा या जिस विषय नाल तुसी संबंध रखते हो यह विशा ऐसा है जिहदी गंभीरता नूं अज दे समय दे विच जानना पछानना और इहदे बाबत जागरूक होना इस समय की लोड़ है क्योंकि मुढ़ कदीम तो आपां देखते हैं कि पंछियां दा जिहड़ा मनुखी जीवन दे विच बहुत वड्डा योगदान है या आपां इह कह सकदे हैं कि साडा पंछियां दे नाल पशुआं दे नाल मुढ़ कदीमी रिश्ता है क्योंकि बंदा कल्ला तां आया नहीं इत्थे उहदे नाल हर जीआ जंत है जिहड़ा मालिक ने किसी ना किसी कार्ज लिए इत्थे भेजिया है। अज क्योंकि आपां विशा जिहड़ा है प्रवासी पंछियों की गल करनी है आपां ते सब तो पहला तो आपां क्योंकि आम जन सधारण पढ़े लिखे लोग शायद जानते भी हो या अनपढ़ भी कई जानते होंगे पर यह है कि आम जन सधारण नूं पंछी ते प्रवासी पंछी ये दोनों चीज़ों जदों आपां इन्हां नूं भिन्न भेद समझना होवे कि पंछी ते प्रवासी पंछी का अंतर की है इहनूं आपां किद्दां समझ सकदे।
2: रुलिया राम जी बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन दे लई जिहड़ा आपां तुसीं आपां सबजैक्ट ते गल कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प आ ते इह सदियां तो ही मनुख नूं किसे ना किसे तरह ना जिवें अपनी अपनी कह लो नॉलेज नूं अपने हमेशा किसे जग्यासा नूं इह किसे ना किसे तरह ना आपां नूं हमेशा इदां अट्रैक्ट करदा रहा वा कि इह पंछी हज़ारां सालां तो आपां ईवन कि बहुत सारियां पुरानियां सभ्यतावां दे विच वी पंछियां प्रवासी पंछियां दा जिक्र आया है उहनां दीआं उहनां दे फोटोग्राफ शिलालेखां विच मिले ने जिहड़े प्रवासी पंछी ने ते आम पंछियां दा सब तो वड्डा अंतर इह आ प्रवास दा इहदे मतलब आ कि जिहड़े पंछी अपनियां रहण वालियां थावां जिथे कि उह प्रजनन करदे ने उस थां तो दूसरी थां जिहड़ी कि हज़ारां मील दूर हैगी आ उत्थे जा के अपना ओह टाइम जदों कि प्रजनन थावां ते खाण पीण दे स्रोत घट जांदे ने और जिहड़ा तापमान काफ़ी डिग पैंदा जां बर्फ दे थल्ले आ जांदा सो उह उत्थों माइग्रेट करके उहनां साउथ वल उहनां थावां वल जांदे ने जिहड़ियां कि गर्म ने जिथे खाण पीण दी जिहड़ी हैगी है प्रफुल्लत साधन अवेलेबल ने पर मौसम दे बदलण दे नाल ही उह मौसम दे संकेतां नूं देख के मुड़ अपणियां थावां जिथे कि उह प्रजनन करदे ने वापस आ जांदे ने। इहदा मतलब इह आ कि माइग्रेशन प्रवास दा इह मतलब आ इक थां तों दूसरी थां ते ट्रैवल करना और लौ उहदे विच लंबी दूरी दे पंछी भी ने ते छोटी दूरी दे पंछी भी ने सो उह जांदे ने तो वापस आउंदे ने और हर साल इदां करदे ने। इहदा मतलब है कि मौसम

0: कि असी भी जहाज
1: हाँ
0: बनाइए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: असी भी ऐदां दा कुछ करिए, असी भी उड्डीए। हाँ जी
1: देखो बड़ी आ दिलचस्प गल्लां प्रवासी पंछियों के बाबत। जो आप खतरियां की गल करते हाँ,
0: जी
1: क्योंकि जो
0: सर,
1: आप मूल उद्देश अज की गलबात का
0: हाँ जी
1: आप जिक्र यही है
0: हाँ जी
1: कि इन्हों की जीवन आपां ने संरक्षण देना है, इन्हां नूं बचाउणा है। जदों आपां इन्हां नूं खतरियां तों बचाउण दी गल करदे हां, उहदे च किहड़े किहड़े उपराले है जिहड़े आम जन सधारण, जिद्दां तुसीं कहा
0: हाँ
1: वैटलैंड
0: जी
1: हैगी आपणियां,
0: बिल्कुल जी
1: है ना,
0: बिल्कुल जी।
1: ते उत्थे ही कर सकदे हां, या किथे किथे आपां किस किस पक्ष दे उत्ते योगदान दे सकदे हां?
0: इन्हां नूं बचाउण लई सब तों वड्डी तां हैगी है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, उहदे 'च 133 देशां ने साइन कीते सी, भारत सरकार ने भी, जिहड़ा आपां वी उहदे सिग्नेटरी हैगे आ। उहदे विच उहदे तहत आपां कोशिश करदे हैगे आ कि इन्हां वैटलैंड्स दी सुरक्षा वधाई जावे, उत्थे पंछियां दी सुरक्षा अपने आप ही हो जांदी है जे उत्थे बनस्पति दी सुरक्षा उत्थे, और उत्थे होर सारा जिहड़ा हैगा चौगिरदा आपां उत्थे साफ रखदे हैगे आ। सो इस तों इलावा रामसर कन्वेंशन दे आपां जिहड़ा हैगा भारत ने सिग्नेटरी और पार्टी हैगी, रामसर कन्वेंशन के तहत आप बहुत सारिया वैटलैंड्स इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दी आ जिथे कि प्रवासी पंछी आते हैं, और वो रामसर साइट्स से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा डिवेलपमेंट लिए पैसा भी लगाया हैगा। सो जो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ जी हैगी इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अहम भूमिका निभा रही आ। इंडिया की बहुत वड्डी एजेंसी जी हैगी ZSI जियोलॉजिकल जी हैगी जो कि सारे पंछियों का जीवों का सारा सर्वे करती हैगी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी ये दे विच बहुत वड्डा भूमिका निभा रहा है। उस तरह पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन हैगा, वो हर साल वैटलैंड उत्ते पंछियों की जनसंख्या दे दा डाटा कंपाइल करता जिदे असी बहुत सारे सालों तो उन्होंने नाल काम कर रहे हैं। इस तो इलावा जी हैगी आप कन्वेंशन ऑन जैविक विभिन्नता, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ, भी 1992 जो हुई सी उहदे तहत भी आपां जिहड़े हैगे सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स दे फ्लाईवेज नूं आपां करिए। सो इस तों इलावा कन्वेंशन जिहड़ी हैगी है कंजरवेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स ते भी आपां संधि दे विच शामिल हैगे हां। उस तरह भारत जिहड़ा हैगा कन्वेंशन ऑन जिहड़े हैगे इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड एनिमल्स जिन्ना वाइल्ड लाइफ एक्ट, सो आपां हर तरह की संधि दे जे पूरा उतरन की कोशिश की हैगी आ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हुण जिक्र ये है कि देखो साड़ी जिहड़ा सरमाया है जां साडा खजाना है, साड़ी नसल है ना,
0: बिल्कुल जी,
1: जैसी नसल वैसी फसल। हुण जदों आपां साड़ी आने वाली जनरेशन जां आने वाली साड़ी नसल उहनूं इहनां दी अहमियत बारे इन्हां दीआं सारीआं लोड़ां दी पूर्ती दे बाबत जे समझाउणा होवे, ते जिद्दां हुण आपां इह कहि सकदे आ कि इन्हां दे समां सारणी ते होऊगी किहड़े किहड़े समयां दे विच इह प्रवास करके वैटलैंड्स दे विच आउंदे आ, किहड़ियां किहड़ियां वैटलैंड है, ते किद्दां साडा जिहड़ा यंग जिहड़े साडे बच्चे है जां साडे यंग लोग है उहनां नूं इहदे नाल जोड़न लई कोई उपराले है कीते जा रहे तां कि उहनां नूं इस दा महत्व और इन्हां दी जीवन शैली, क्योंकि इन्हां दी जीवन शैली तों साडे लई सिखण नूं बड़ा कुछ है।
0: सिर्फ इदा वा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाते हैं सारी दुनिया के, वो आम तौर पर मनाया जाता है दूजे शनिवार जा ता मई महीने के अक्तूबर महीने के, पर अपने इंडिया के ज़्यादा माइग्रेटरी पंछी जोड़े है सर्दी की आमद जो अपनी शुरू होंगी है उदों ही आते हैं। सो जो अक्तूबर का हैगा वह बहुत जो स्कूलों च मनाया जाता है जिद एग्जीबिशन भी लगती हैं, टाक शोज़ भी होंगे, वो बच्चों के कंपीटिशन भी होंगे, सो लैक्चर्स भी होंगे ता कि बच्चों का जोड़ा है बर्ड फैसटिवल्स भी कई यूनिवर्सिटियां कर दें और टूर्स भी लगाते हैं कई एरियाज़ दे विच जिहड़े हैगे कंजरवेशन एरियाज़ दे विच ताकि उन्हां नूं उन्हां पंछियों दे बारे जानकारी और उन्हां दी आइडेंटिफिकेशन बारे पता लगे। सो इह बहुत सारे जिहड़े मैथड ने आपां अपने पंजाब दे विच पोंग डैम दे नेड़े हिमाचल ते पंजाब दे बॉर्डर ते पोंग डैम ते बहुत पंछी आउंदे आ, हरीके वैटलैंड भी आपां बच्चों नूं लैके जाइए स्कूलों के कॉलेजों नूं ते बहुत सारे आपणे 200 तों वध माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ उत्थे आउंदियां ने। सो उन्हां दे नाल उन्हां दी वी जिहड़ी जानकारी वधूगी तो उन्हां दे मन च चाह भी होऊगा कि आपां उन्हां नूं बचाइए। सो उस तरह जिहड़ा हैगा नंगल वैटलैंड दे विच भी पंछियों का, रोपड़ वैटलैंड दे विच भी, कांजली वैटलैंड दे विच भी। सो ये जिहड़ा हैगा ना बेसिकली मैनूं ऐ लगदा हुंदा कि जे आपां ना सर्दियों दे विच जिवें कह लो कि नवंबर दे विच जदों कि हुण टैंपरेचर घटना शुरू हुंदा उदों पंछी आने शुरू हो जांदे आ, ते जदों टैंपरेचर वधना शुरू हुंदा फरवरी दे अंत च उहनां दी वापसी शुरू हो जांदी आ। इन्हां महीनियां दे विच बच्चियां दा जरूर ट्रिप लवाइए,
1: बड़ा जरूरी है। ते मेरा पूछण दा मतलब ये है कि देखो आपां है सारे कुदरती जीव आ,
0: बिल्कुल
1: जी, कुदरत नालों टुट्टिया जीव सिर्फ और सिर्फ मनुख है।
0: हाँ जी,
1: ते मनुख नूं कुदरत नाल जोड़न दा सब तो वधिया तरीका यही है कि कुदरती स्रोतां नाल या

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अस आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 7:30 बज रहे ने, हुण तुसी सुनोगे पंजाबी च खबरां।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने जनतक वंड प्रणाली PDS नूं आधुनिक बनाउण दी योजना नूं March 2031 तक जारी रखण नूं प्रवानगी दे दित्ती है। सर्वोच्च अदालत ने चोण कमिश्नर वालों करवाई गई वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया की वैधता नूं बरकरार रखिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में 3 होर लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की तरक्की लिए उत्तर पूर्वी खेत्र का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। IPL क्रिकेट में अज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ विखे एलीमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स नाल हो।

दूसरे स्थान चला गया। वह जगह उनके घर से काफ़ी दूर थी। बस में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि बस में टिकट लेनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने पड़ोसी का साइकिल लेकर जाने का फैसला किया। साइकिल क्या, बस नाम की साइकिल थी। जब चलने लगी तो ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे चारा काटने की मशीन चल रही हो। साइकिल का कोई ऐसा पुर्जा नहीं था जिस पर जंग ना लगी हो। प्रभु दयाल जी भी कहाँ कम थे, उनके सर पर पैसे ना खर्चे करने का भूत सवार था। साइकिल की गड्डी पर कागज़ रखा और चल पड़े। चलने के समय साइकिल इतनी आवाज़ देने लगी कि सभी लोग डर कर स्वयं रास्ता छोड़ने लगे। प्रभु दयाल जी गुनगुनाते जा रहे थे। दफ्तर के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। दफ्तर के पास पहुंचते ही रास्ते पर पड़ा पत्थर उन्हें दिखाई नहीं दिया। साइकिल पत्थर से टकरा गई। प्रभु दयाल जी एक तरफ गिर पड़े, साइकिल दूसरी तरफ लुढ़क गई। साइकिल का धड़ तीसरी ओर लुढ़क गया। अब वे लगे आंसू बहाने। चपरासी को भेजकर साइकिल के पुर्जों को इकट्ठा किया और शाम को रिक्शा में डालकर घर पहुंचे। यानी कि एक रुपये की बचत के बदले उन्हें कई सौ रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि सिर मुड़ाते ही ओले सहन करने पड़े उन्हें। प्रभु दयाल जी दिल के तो दरिया दिल हैं, लेकिन खर्च करते समय वही दिल सिकुड़ जाता है। दरअसल उन्हें माया से ज़्यादा ही मोह है। उनके मित्र की बेटी की शादी थी, प्रभु दयाल जी को निमंत्रण तो देना ही था। उनके मित्र से गलती से या बदकिस्मती से सपरिवार लिखा गया। प्रभु दयाल जी ने इस शुभ अवसर को हाथ से ना जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। घर के सभी सदस्यों को तैयार रहने का नोटिस दिया गया। प्रभु दयाल जी ने मन ही मन सोचा, शगुन तो देना ही है, फिर शर्म किस बात की। इसी बहाने दूसरे लोगों से मेल हो जाएगा और परिवार के लोग भी अच्छे खाने का लुत्फ ले लेंगे। विवाह के रोज़ प्रभु दयाल जी जल्दी ऑफिस से छुट्टी कर आ गए थे ताकि समय पर तैयार होकर विवाह में शामिल हो सकें। बच्चे भी खुशी खुशी तैयार हो रहे थे। बीवी ने भी पुराने गोटे वाली साड़ी निकाल कर पहन ली। सभी सज धज कर घर से चल पड़े थे। विवाह स्थल पर पहुंचकर प्रभु दयाल जी ने वहां घूम रहे बैरों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने मित्र की ओर देखा भी नहीं। जल्दी से कुर्सियों पर बैठकर बैरों को इशारा करने लगे। उधर लड़की के पिता समझे कि प्रभु दयाल जी शायद उन्हें बुला रहे हैं। वह सभी को छोड़कर उनके पास पहुंच गए। प्रभु दयाल जी को शर्मो शर्मी शगुन के पैसे निकालने पड़े। इधर जेब के खाली होते ही पेट में चूहे नाच कूद करने लगे। अब तो उनके लिए एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। स्वयं बैरे को पकड़ कर ले आए, अपने दोनों हाथों को भर लिया और बच्चों को भी अपनी प्लेट भरने का इशारा कर दिया। जो भी बैरा उनके पास आता वह उसे निराश नहीं करते। समोसे और बर्फी का तो कोई उन्होंने हिसाब किताब ही नहीं रखा। इतने में कॉफ़ी लेकर बहरा पहुंच गया। अब उसे वो कैसे निराश करते। उन्होंने फैसला कर लिया था कि स्वयं दुखी हो सकते हैं लेकिन बहरे को निराश नहीं करेंगे। गर्मा गर्म कॉफ़ी का प्याला उठाया और शुरू हो गए। अभी एक दो घूंट पिए ही होंगे कि एक नवविवाहित लड़की उनकी तरफ बढ़ने लगी। पहले तो समझे किसी और को मिलने आ रही होगी, लेकिन वह तो उनकी ओर ही बढ़ती आ रही थी। एक तरफ मुंह पर कॉफ़ी का नंद लेने लगे, लड़की ने पास आकर कहा, अंकल जी नमस्ते। प्रभु दयाल जी डर से ऐसे खड़े हुए जैसे कोई बड़ा अफसर अचानक चेकिंग के लिए आ गया हो। एक

बार चश्मा साफ किया, फिर उतारा, फिर लगाया, लेकिन समझ में नहीं आया, बेटी मैंने पहचाना नहीं, कलाशो माँ की बेटी हूँ। प्रभु दयाल जी मानी मान कहने लगे, फिर जहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम्हारी शादी कब हुई? पिछले महीने। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके चाचा की बहन की शादी है। इधर पत्नी धीरे धीरे मेरे बाजू को पकड़ रही थी। प्रभु दयाल जी समझ कर भी ना समझ बन रहे थे। आखिर पत्नी को कहना ही पड़ा, इधर आकर बात सुनना। दूसरी तरफ पहुंचते ही वह गरज उठी, क्या बातें ही करते रहोगे, लड़की को शगुन नहीं डालोगे? काहे का शगुन? अरे हमारी बेटी लगी, कल को कलाशो मिली तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम तो मुंह अपना मत दिखाना, तुम्हें मस्करी सूझ रही है। जल्दी से शगुन डालो और घर चलो, बहुत देर हो गई है। अच्छा रोटी खाकर चलेंगे, देरी तो हो ही गई है, वो बाद में देखेंगे, पहले शगुन डालो। प्रभु दयाल जी ने पर्स के एक कोने में संकटकालीन कुछ रुपये रखे हुए थे, उन्हें निकाला और शगुन देकर विदा ली। रुपयों के जेब में से जाते ही भूख ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। प्रभु दयाल जी के पेट में के सभी चीज़ें हजम हो चुकी थी। उनके सामने तरह तरह की सब्जियों से भरे डोंगे नज़र आने लगे, उनका मुंह पानी से भर गया। उन्होंने परिवार सहित खाने की मेज़ पर हमला कर दिया, खुद प्लेट में लिया, परिवार को दी। सभी ने प्लेटें ऐसे भर ली जैसे मुद्दत के बाद खाना खाने को मिला हो। पेट में खाना ऐसा ढूंसा जा रहा जैसे बोरी में अनाज डाला जा रहा हो। इसका कारण ये था कि प्रभु दयाल जी को शगुन पर शगुन डालना पड़ रहा था, वे अपने सभी पैसे पूरा करना चाहते थे। प्रभु दयाल जी जितना कंबल को छोड़ना चाहते थे, कंबल उतना ही उसे नहीं छोड़ रहा था। वे जितना पैसे कम खर्च करना चाहते थे, उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। अब उन्होंने विवाह और पार्टियों पर जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक बार नहीं अनेक बार लेने के देने पड़ चुके थे। ऑफिस की ओर से उन्हें एक क्लर्क की नियुक्ति का काम सौंपा गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर काम करने का निर्णय लिया ताकि इससे कुछ फायदा हो सके। सरकारी इंटरव्यू लेने के पश्चात उन्होंने गैर सरकारी पूछताछ शुरू कर दी। प्रभु दयाल जी को जब मालूम हुआ कि उसका पिता सिनेमा घर में काम करता है, तो उन्होंने उस लड़के को रखने का फैसला कर लिया। वह सोचने लगे, कम से कम मुफ्त में फिल्म देखने को तो मिल जाएगी। प्रभु दयाल जी का दिमाग तरह तरह की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद प्रभु दयाल जी ने उस लड़के को दफ्तर में अपने पास बुलाया। और बेटा कैसे काम चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा। बेटा एक काम था। हाँ जी बताइए। मेरे परिवार के लोग पिक्चर देखना चाहते हैं। अच्छी बात है, टिकटों का इंतज़ाम करना, वह हो जाएगा। कौन से दिन पिक्चर देखना चाहेंगे? इसी शनिवार को। ठीक है, मैं अपने पिताजी को बता दूंगा, आप पहुंच जाना। शनिवार को प्रभु दयाल जी परिवार सहित सिनेमा घर पहुंच गए। वहां लड़का पहले ही से ही खड़ा था, वह उन्हें अंदर ले गया। उन सभी को बालकोनी में बिठा दिया गया। कुछ ही देर बाद खाने के लिए चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक भी उनके पास पहुंचा दी गई, इसलिए लड़के ने पहुंचाई ताकि उसकी नौकरी जल्द से जल्द पक्की हो जाए। सभी ठंडा पी रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। इतने में हाल में अंधेरा छा गया और पिक्चर शुरू हो गई। अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी छाया। अचानक किसी ने प्रभु दयाल जी के कंधे पर हाथ रखा और वह चौंक कर पूछा, क्या बात है? टिकट? कौन सी टिकट? सिनेमा की। वह लड़का कहाँ है? कौन लड़का? जो हमें छोड़ गया था। आप बाहर आइए। प्रभु दयाल जी दुखी मन से बाहर आ गए। इधर परिवार के मेंबर पिक्चर देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। प्रभु दयाल जी दूसरी तरफ सफाई देकर मैनेजर को शांत कर रहे थे, आप टिकट दिखाएं,

0: ना जुर्माना होगा। जुर्माना सुनते ही प्रभु दयाल जी का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, वे गड़गड़ाने लगे। 250 रुपये की बजाय 500 रुपये देकर उन्हें छुटकारा मिला। वह लड़का अपने पिता साथ गायब हो गया था और प्रभु दयाल जी के परिवार पिक्चर को देख रहे थे। इधर प्रभु दयाल जी ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, अब जो मर्जी हो जाए कभी भी ऐसा काम नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से खजूर में आकर अटकना पड़ जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता प्रोग्राम में प्रेम विज की व्यंग्य वार्ता आसमान से गिरा खजूर में अटका। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तुसी समात फरमाओगे मकबूल पाली दी आवाज़ गज़ल।

सकते हो। बहुत ज़्यादा तले हुए या फिर मसालेदार खाने तो परहेज करो। दोपहर दे समय बिना लोड़ दे घर तो बाहर ना ही निकले जावे ता ही तुसी तंदुरुस्त रह सकते हो। हल्के रंग ते सूती कपड़ियां दी वरतों गर्मी तो बचाउंदी है। सो जनाब इन्हां दी वरतों करके ही तुसी अपने आप नूं तंदुरुस्त रख सकते हो। घर दे कमरियां नूं ठंडा ते हवादार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए तुसी पौधे लगा सकते हो वातावरण नूं साफ रखण लई। पौधे बहुत ज़्यादा कारगर ने, नाल ही नाल ये गर्मी के प्रभाव नूं भी घटाउंदे ने। सो जनाब बच्चों ते बजुर्गों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो गर्मी तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। धुप विच लंबे समय तक रहन दे नाल लू लगन का खतरा रहता है। इसलिए सावधान रहो ते बहुत जरूरत है ता ही दोपहर वेले घर तो बाहर जाओ। अदर नहीं तो तुहानू घर के अंदर रह के ही गर्मी तो अपना बचा करना चाहिए। शरीर विच कमजोरी या फिर चक्कर आने ते तुरंत आराम करो ते पानी पींदे रहो। गर्मियों विच साफ सफाई का खास ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ताकि बीमारियों तो बचा जा सके। ठंडे ते पौष्टिक भोजन का सेवन शरीर नूं तंदुरुस्त रखता है। जनाब छोटी छोटी गल्लां का ध्यान रख के ही असी अपने आप नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं क्योंकि जिंदगी हसीन ता ही बनती है जेकर मनुख तंदुरुस्त है ता ही उस जिंदगी नूं सही तरीके नाल जी पाएगा। सो जनाब इन्हां गल्लां का ध्यान रखो ते अपने आप नूं गर्मी तो बचाओ।

और संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

0: अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा

में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2020.

0: के ऊपर भी चर्चा हुई।
1: स्पीकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन न्यू दिल्ली, डॉक्टर नवल किशोर विक्रम एडवाइज्ड पीपल टू टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट हीट रिलेटेड इलनेस।
2: अवॉइड एज मच एज गेटिंग एक्सपोज टू द एक्सट्रीम हीट। इफ यू कांट अवॉइड देन यूज प्रोटेक्शन सच एज एन अम्ब्रेला, कैप, समथिंग लाइक दैट। डिहाइड्रेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। थिंग टू प्रिवेंट दिस, कीप ऑन हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, कीप ऑन टेकिंग फ्लूइड्स एवरी 1 hour or so if you are outside.
1: Medical experts have also advised people to take special care for vulnerable groups such as children, the elderly and individuals with pre-existing health conditions. With Anupam Mitra, Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Meanwhile, the IMD has predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry tomorrow. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली।

0: है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो वो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में यानी 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था, और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य

0: होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
0: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
2: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन

0: इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी
0: विदेशी
1: बिल्कुल
0: मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठ का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है, मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं

0: कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो, ये इतने आदमी हैं, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिविजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है, जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं। मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? और बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never

0: associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
1: Praful ji, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी

0: और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है। और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा, तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 10 बजे हुण पेश ने मुख खबरां। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने जनतक वंड प्रणाली नूं आधुनिक बनाउण दी योजना नूं मार्च 2031 तक जारी रखण दी प्रवानगी दे दित्ती है। सर्वोच्च अदालत ने चोण कमिशन वालों करवाई गई वोटर सूचियों की विशेष तीव्र सोध SIR प्रक्रिया की वैधता नूं बरकरार रखा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले विच 3 होर लोगों नूं गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की तरक्की लई उत्तर पूर्वी खेतर का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध निशानेबाज, 5 बार के ओलंपियन और भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन के सबका ऑनररी सकत्तर जनरल राजा रणधीर सिंह का आज लंबी बीमारी तो बाद देहांत हो गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कल नूं लू चलन तो बाद मौसम च तब्दीली की पेशनगोई की। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बीते दिन ब्याह समागम दौरान खाना खान पिछों बीमार हुए व्यक्तियों नूं सिविल अस्पताल मूनक च दिते जा रहे इलाज का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों नूं सारे प्रभावित व्यक्तियों लई तुरंत इलाज यकीनी बनाने के निर्देश दिते। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने संबंधित अधिकारियों नूं साबका सैनिकां लई रोजगार दे बेहतर मौके प्रदान करन दे दित्ते निर्देश। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारां दी तस्करी वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश करदिआं 5 मुलजमां नूं 8 आधुनिक पिस्तौलां ते कारतूसां समेत गिरफ्तार कीता। IPL क्रिकेट विच अज मोहाली दे न्यू चंडीगढ़ विखे एलीमिनेटर मैच विच सनराइजर हैदराबाद दा मुकाबला राजस्थान रॉयल

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता

0: सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। सो दोस्तों, तुसीं इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी पंजाब ते अपने दोस्त कमल दे नाल। ते तुसीं भी साडे वेड़े अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश लैके पहुँच सकते हो। ते साडा नंबर है 01 81 23 41 171। ते व्हाट्सएप दे जरिए भी तुसीं अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो। साडा नंबर है 9465536077। पर एक गल का ख्याल रखना जी कि पंजाबी गीतां दी ही फरमाइश इत्थे प्रवान होएगी, क्योंकि हिंदी गीतां दा ये प्रोग्राम नहीं है। कई साडे स्रोते हिंदी गीतां दी फरमाइश भी सानू कर देंदे ने। सो साडे वेड़े साडे कॉलर दोस्त पहुँच चुके ने, ते फिर राबता कायम करदे आ उहनां दे नाल। हैलो
1: हैलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कड़ी जगह तों बोल रहे ने?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ दा।
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत, ते पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਝੂੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਸਿਟੀ ਦੀਵਾਨਾ ਪੰਖਾ ਰੋਡ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਪਿੰਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਰਜਿੰਦਰ ਓਬਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਮੇਰਿਆ ਦਿਲ ਬਰਾਵੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਪਾਠਕ, ਕਮਲ ਪਾਠਕ, ਦੀਪਿਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਗਾਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ

0: हेलो।
1: हेलो, समीर
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: जी,
0: सो बहुत बहुत स्वागत बिट्टू जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल तुहाडा स्वागत है।
1: बिट्टू
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद बिट्टू जी। दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए तुहानू।
1: अजय कमल भाजी सुना रहे हो अमन लोहड़िया गाना जी, काला डोरिया सुना दो, बहुत मेहरबानी शुक्रिया तुहाडा।
0: धन्यवाद जी। काला डोरिया कुंडे ना लड़े आइयो।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: बिल्कुल, एक दो मैसेज पढ़ लिए फिर तुहाडी फरमाइश असीं
1: ठीक
0: पूरी
1: है,
0: करते हैं।
1: ठीक है जी, ओके जी, बाय।
0: धन्यवाद। सो दोस्तों, सानू ये अगला मैसेज सानू मिलिया जी सौगात प्रोग्राम विच, गवाओं फरांसी हिसार तो राजकुमार ढुडी, प्रमोद कुमार ढुडी, पुष्पेंद्र ढुडी कहिंदे जी कोई भी गीत सानू तुसी सुना दिओ। ते अगे सानू मैसेज मिलिया जी कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल कहिंदे कोई भी गीत सानू तुसी सुना दिओ। ते लो जी फिर इंजॉय करते हैं गीत।

0: हेलो
1: कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा तो।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: हर भजन मान दा ला दो जी, कल सुबह नो यार पता नहीं की होना।
0: क्या बात है, क्या बात है। लो जी, बस एक दो मैसेज पढ़ लिए फिर तुहाडी फरमाइश पूरी करते हैं। सो सानूं काफ़ी सारे मैसेजेस साडे दोस्तां मित्रां दे मिल रहे ने, और ये सानूं खैरपुरा मिसिज सिंध विलेज तो वल्दी वलीदाद खान, मुहम्मद सदीक। ये कहिंदे ने जी कोई भी सानूं मुहम्मद सदीक दा गाना सुना दिओ ते जरूर। मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिराज शर्मा, सुरेश शर्मा, कोई भी गीत कहते सानू सुना दें तो जरूर आओ, फिर इंजॉय करते हैं गीत।

0: हो जाने जारा मित्रो तेरी जिंदगी च कदे
1: कदे मिल। दोस्तों प्रोग्राम सौगात दा वेला हुण मुकदा गया है, अपने दोस्त ते प्रोग्राम दे होस्ट कमल शर्मा नूं हुण इजाजत दिओ, फिर मिलांगे, तद तक लई रब रखा।

कल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। गुरमत अनुसार सब तो पहला खुदा दा परमात्मा दा नूर ही है जिसने समुचे जगत नू पैदा कीता। पहला उस करते ने चानन रचया ते फिर अपनी अपार शक्ति द्वारा सारे जीव जंत यानी प्राणियां दी सिरजना कीती। जदों एक ही प्रभु दी जोत तों समुचा जगत सारा आलम पैदा होया है तां फिर जात मजहब दे भुलेखियां च पै के किसे नूं चंगा या माड़ा क्यों समझा जावे। परमेश्वर सबना दा पिता है, सारे जीव उसे दी ही संतान हन। उस दी रजा विच रहण वाले, उस दी होंद नू मनन वाले अपना आपा तक वार दिंदे ने। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। सरवण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। इस शब्द गायन कीता सी पाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सृष्टि दे आरंभ तो पहला केवल वो अकाल पुरख ही सी, उस तो बाद उस दे नूर तो कुदरत दे पांत पांत दे जीव सिरजे गए। सब जीव एक समान हन, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। सरवण करदे आ पाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द है।

0: अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। इस शब्द का गायन किया सी पाई निर्मल सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगबीर सिंह।
1: प्रभाती अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भुल हो भाई, खालक खलक खलक।

तेरी बैठा, कटकट अंतर तू है उठा, सभे साजी वाल सदायन, तुम किसे न दिसे बाहरा जियो। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

बाल बाल खाद बलिहार अमृत परवाथार अतुल भंडार पार पराही ते पराय अपर अपार पार अपन

0: तन मन तन मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्ब को तान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान है हां के बल बल बल बल सद बलिहा
1: निरंकार आकार अखल पूरन अविनाशी हर खवंत अनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत।

0: तिल नहीं पासी, जां को हो हे कृपाल, सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी। तन तन ते तन जन, जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो, से जन्म मरण दो थेरे हो। तन तन ते तन जन, जय कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो, से जन्म मरण दो थेरे हो।
1: सत सत हर सत, सत सते सत पणिया, दूसर आनन अवर, पुरख पौरातन सुनिया। अमृत हर को नाम लैत, मन सब सुख पाए, जेहर सिन चाखियो तेजन

0: गुरु समरथ कह करिया त्रोबुद्ध सुमत सुमारन को पुनत रमत जा फैरंत सदा अग पुंजत रंग निवारन को मथुरा जन जान कही जिय साच सो और कछु ना बिचारन को हर नाम बोएत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को।
1: ब्रह्मा दिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख है देव अर दानव इक तिल ताको मरम ना पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे ते

0: सगल सृष्टि लगे बेतरो।
1: निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाहत बाढ़ सुपर सदा सब बिदरत नागर संत।

ज्यो मछली बिन नीर बिन सै त्यो नाम बिन मर जाई। मेरे प्रभ कृपा जल देवहु हर नाई।

रहाओ। ज्यों चात्रिक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरि आपाए सुपाई। मन मुख भूखे दह दिस डोलह, बिन नावै दुख पाई।

नानक दीन दयाल पए है, त्रिसना शबद बुझाई। कृपा करह ता हर गुण गावह, हर रस अंतर पाई। नान

0: नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है। सतजुग रथ संतोख का धर्म गै रथवाओ त्रैते रथ जते का जोर गै रथवाओ। द्वापुर रथ तपे का सत गै रथवाओ कल जुग रथ यगन का कूड़ गै रथवाओ। महला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सत समावे रिक कहे रहे आप भरपूर। राम नाम दिवा मैं सू नाय ले प्रश जय नानक तो मखंत्र पाए जो जिवे जोशली तुदावल कान किसन जादम भया। पार जात को पीले आया वृंदावन में रंग किया कल मह बेद थरबन हुआ ना खुदाई लो भया। नील बसले कपड़े पैरे तुरकठानी अमल किया चारे वेद हुए चार प्रगुण चार विचार। पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मखंतर पाए पौड़ी।

0: धोती टिक्का तै जप माली तान मले शाखाय अंतर पूजा पड़क ते बास संजम तुरका पहाय छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री वगाय तिन गल ताक तिन घर ब्राह्मण पूरे नाथ ओना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दू नानक कूड़ रहा प्रभु मथे टिक्का तेड़ धोती कखाई हाथ श्री जग कसाई नील वस्त्र पैर वे प्रवान।

0: जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे, अगे बस सियाणी है पितरी चोर करे, वड़िया है हाथ दलाल के मुसबी है करे, नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
1: जो जो रुसे नावनी आवे वार वार जुठे जुठा मुख वसै नित।

सूत क्यों कर रखिए सूत को पवै रसोय, नानक सूत के ना उतरे ज्ञान उतारे तो महल्ला।